0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। और तारे जो अंतरनाम सर्व में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर तेरा रूप न पेख्या नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद वेख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, बैसनु सो जिसो परसो प्रसन्न, बिसन की माया दे हुए भिन्न। कर्म करत होवे नह कर्म, दिस बैसनु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब उपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक हो बैसनु परम गत पावै। भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै, सगल पार ब्रह्म। सा संग बापा मल खोवै, दिस भगौती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नित, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हार के चरण हृदय वसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम मत में सोधै। राम नाम सारस बीजै, उस पंडित के उपदेह जग जीवै, हर की कथा हृदय वसावै, सो पंडित फिर जो नावै। वेद प्राण सिमरत बूझै, मूल सुख मैं जाने उसूल, चौ वर्णा को देवदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सा संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै, पश प्रेत मुग्ध पात्र को तारै, सर्व रोका औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत किते ना पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिख्या धुर कर्म। जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंदण भय तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म दास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद है नाही वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा ते नाओ। आपे करण करावण जोग, प्रभावै सोई पुन होग, पसरे आप होए अनंत रंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पए निहाल। श्लोक करे अनेक जन
1: प्रकार अष्टपदी, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब काप विचारे, कई कोट नव तो नव त्यावे, नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट विज्ञा तुमने कोर, कई कोट परदर्व, कई कोट परदर्व कह रहे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ हो ते तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध ज्योति जोगी, कई कोट राडे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बृख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सु नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्र अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै।

आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तुस भाव सोई फन थियो कबहू ऊच नीच में बसे कबहू सोग हर रंग हसे कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू उपकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत करे भात कबहू सो रह दिन रात कबहू महाक्रोत विकराल कबहू सर्व की हो तुरबाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू बेखारी नीच का साजा कबहू अब कीर्त में आवे कबहू पला पला खावे ज्यों बरबरा कहते मिही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोहन तार लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया अनक जोन परम परमिया नाना रोज सागत खाव जो प्रभावे जवै न चावे जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू साध संग ते पावे उस स्थान ते बहु न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन अमृत।

श्रम पावे सगले बिरथारे। अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अनिक जतन कर आत्म नहीं त्रवै, हर दर गौ कैसे गवै। आप सुगो जो पला कहावै, तिसे पलाय निकट न आवै। सर्व कीने जाका मन होएगा, नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मूर्ति का छोए, तब इसका सुख नाही कोय। जब है जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोर में फिरता। जब थारे को बैरी मीत, तब लग निहचल नाही चीत। जब लग मोह मग्न संग माए, तब लग धर्म राय देस जाए। प्रकृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हा छूटै। सहसकटे लाका उड़तावै, तृप्त नावै माया पाचै पावै। अनेक भोग विख्या के करै, नेत्र बतावै खप खम रै। बिना संदोक नहीं को राजै, स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए।

तेरा अंत न पारा वरिया राग असा महला चौथा सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै तुझी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तुझिया का दातारा हर त्याव संतोह जी सब दुख विसारनहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता पे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवा है जो सेवा तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन भल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करे हर पूजा जी तप तापै जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावै है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जोग जोग एको तू सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपी भावै सोई वरतै जी तू आपी करह सो होई तुद आपी सृष्ट सब उपाई जी तुद आपी सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान होई आसा महला चौथा तू करता सच्चियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हम पाई रहाव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप भी छोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जानाए सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जान सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियाले मन एक न चेत समूढ़ मना
ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰੇ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किल भिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुने गुंग जू जाहि, सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार चौपई को कहै। चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कहिजय। भाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक गहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहै हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर,

वा तन मन थीवै हरे पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम कै दूत नाहीं तेरे छड़ जाहे भौजल बिखम सगाहू गुरसबदी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे सबसे नु कृपाल संभाले साहि साहि बिरथा कोई न जाए जे आवे तुद आहि श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुरनाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर से तीरतिया दरगह पाई ठाओ कहु नानक कृपा करे जिसनों एह वथ दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के महला पंजवा रखे रखनहार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनहु न विसारियन साजना के संग भवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहिं बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमर

जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने। अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किते भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ने ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर रहे ने। सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जावे। इतिहास विचों की सोझी

मेरा मुझ में किछ नहीं। आइक सेठ तन दौलत बड़ा गोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है मेरी भी झोली भर। असत संगियो जंग मंगियाणी दी गल है पक्षतान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी बिसरिया दा तारा। जदों दाता मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते क्लबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया। शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया पुत्र वड्डा।

एक दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कट देता, तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है, एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा, प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देन नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले आज इस नगरी विच आए, बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है, समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़िया भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडिया मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है, आ जदों अपनी मां नू बचे माड़े बोल बोल देने ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। कीड़ा गुनाह कीता है, कीड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगी। तू गुरु नानक नू भुला दिता, बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देन वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे बाबा जी मैनू बख्श देव। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया, बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दिती। आखण लगे बचियो मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने, जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं बाप दी सेवा करया कर। आ बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बे, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने, ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां सब तो पहला तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है, जे फटिया नहीं ते सब तो छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा वो प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है, कदों खुशियां आउणियां ने
ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮੁਜਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ

वेद पुराण सिमरत सिदाखर किनका एक दिस जीव सावे काखी एके दर्श तुहारो सुखमनि सुख अमर परम नाम प्रभ के सिमरन गर्व ना बसे प्रभ के सिमरन काल पर हरे प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागे प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे प्रभ का सिमरन साध कै संग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्धनो निद प्रभ के सिमरन जप तप पूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ के सिमरन होय सुपला से सिमरे जिन आप सिमराए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन तिस ना बुझे प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन मन मल जाए प्रभ जी बसे साध की रसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से मोहताजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला प्रभ को सिमरे से परोपकारी प्रभ को सिमरे से सुख से मुख मुहावे सुहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे संत कृपा ते अनदिन जाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बाणी प्रभ कै सिमरन नहि चल आसन प्रभ कै सिमरन अनंत चुनकार सिमरे से जन जिन को प्रभु मिया हर सिमरन कर प्रगट पुटाए हर सिमरन पै सिद्ध जति जाते हर सिमरन धारी सवर धरना हर सिमरन कियो सगल कारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

मन उहां नाम तेरे संग सहाई तह केवल नाम संग तेरे चलै हर को नाम किन माहे उदारी।

ज्ञान ज्ञान संति ते तरे काम तेन हर गुण गुण गान नाम सुनत दर्द दुख लथा संत पर

ताको कीजे सत नमस्कारा। सर्व सुखता हूँ मन उठा, सर्व ठोक नाम तुम पाया। हाथ पीत करते आनंद राज, अज्ञानी मन रोष करे और उसका विश्वास न होवे। प्रभु की आज्ञा माने माते, नानक साहिब सदा दयाल। सरपद होवत जान अनेक, ओ बिन से ओ मन पछतावे। लपट रहो तहि अंध अंधार, ताको हाथ न आवे के। कर कृपा नानक आप ले लाई।

Sihasu Turakman Mae, Sisko Simur Sangat Mae, Tise Tiai Sadaman Yandaram, Arta Simur Tisirasana, Nandrana Tiai Tiavan Jojo, Tise Tiai Katavar Lubale, Man Arta Sankata Sadavijay, मुक्तां को जसर संबखाने मन सदा त्याय केवल बार ब्रह्म नानक खासे पी कर जावे दिवलावो तिस राम स्नेही मन सुख पावे हर हर जस कहते मन सरनी पर ठाकुर पर ताके मन सा सा सिमरो प्रभुचे नानक ता की भगत करे मन से सिमरतो आलस की जय मन तिस पर को कबू न विसारी राख प्राण प्रभु अपने मना उठत बैठ सत से ध्याई इहां उहां नानक ते हरी रखै मन आठ पैर कर तिसका ध्यान सो प्रभु सिमरो सदा अनुप सो प्रभु सत्संगनाथ गुर प्रसाद नानक दस कहै जय प्रसाद पेखे विस्मार जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद संपूर्ण खुलै जय प्रसाद सुख सहज समावे गुरप्रसाद नानक मन जागो किस पर को मूल न मनो विसार प्रेमन मूल तू ताको जाप किसे जान मन सदा हजूरे प्रेमन मेरे तू ताको जाठ नानक जाप जपे जप सोए आप गवाए सो हर गुंगाओ प्रभु दया ते कमल विलास सर्व दया ते मत उत्तम होए आपो कछु न कीन्हु लिया आवो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु नहा।

सगरी खोद साध के संकरण के सुज्ञान साथ सन सब होत निवेरा साथ के संग एक ऊपर जतन नानक साध की शोभा परमा है जवानी साध के संग सदा पर तुल साथ संग अमर रस पुंचा साध के संग मनोहर बैन साथ संग असित मन पावे साथ संग नानक प्रभु प्रसन्न साधु के संग महापुनीत साध के संग नबी का बैर साध संग जाने परमानंदा साध के संग तजे स्वभाव नानक साध प्रभु बने साध के संग सदा सुख पावे साधु के संग जग है साधु के संग महर पहुंचे साध के संग केवल पार ब्रह्म नानक साधु के गुरबान साध संग साधन मीत कुटुंब निसारे जिस तन ते सब को बरसावे साध के संग शोभा सो देवा साध संग अमृत गुण गाए नानक साध के संग सफल जन्म दर्शन पेट होत निहाल साध के संग नर पर हर साध संग बिसरत हर मेला साध के संग न बिरथा जावे नानक हारे साध मूर्ख साध संग साधु के संग कर बैठा साध संग सत प्रयोग मानी नानक साध के संजोग चेता सुने चेता वख्याने साध की उपमा रही प्रभुर साध की शोभा सदा व्यंत साध की शोभा मूझते मूझ

कैसे जल में कमल लेप, कैसे सुसर्व को सोप, कैसे राजहंस को राजे तुल पवान, जो बसुधा को खोदे को चंदन लेप, नानको सब का सहज स्वभाव, जैसे मैल न लागे जरा, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, मन अपने हैं सब तेरी चार, नान जिन प्रभाव करे, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी के कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी की दशा मत बसी, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल दुखता, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी के नाथ, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी से भूल सदा, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसन्न, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी को मुझ त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी का वर प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी को बर बल जाइए, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सजी के नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म

कई कोट आचार विहारी, कई कोट बन परमे उदासी, कई कोट तपी सर होते, कई कोट तब काव विचारे, नानक करते दान तना पावे, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट रिपी गात मुखोर, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट पर देश करमावे, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोटे कोटे रखो की, कई कोट पाथर निख विचाए, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट देव दानव जगत से छत्र, नार जितावे ते संसार, कई कोट वेद पुराण सुमंद शास्त्र, कई कोट नाना प्रकार जात, कई कोट गिरी मेष वन थीवे, कई कोट भूत प्रे सुकर बिरगाच, आनान का परिवत रहा पर पूर, कई कोट नर्क स्वर्ग निवासी, कई कोट वह जो नींद रहे, कई कोट काले धन पाए, कई कोट माया में चिंत, नानक नानक करब के हाथ, राम नाम संति काफी, आत्म में पार ब्रह्म लहते, तिनको मिलो प्रभु विनाश, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, नानक नानक काफी काम, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई जूत की नो विस्तार, सदा सदा एक एक अंकार, प्रपते होए प्रमाय मात, आपे आपे आप प्रसोए, तिन हो उन्हात मात दास, सदा निहारे को नित्रे, अमर पैसा सदा

0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्री श्लोक संत जन परे तो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुख जनते नहीं छुटे
1: संत के दुखन मत होए मलीन संत के हृदय को रखे न कोए संत कृपाल कृपा जे करे संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संतन के दुखन तृष्णा मह जले संत के दुखन ते सब जाए संत दुखी का थाओ को नाहे संत का निंदक महात ताई संत का निंदक महात यारा संत का निंदक राज तेहीन संत के निंदक को सर्व रोग संत की निंदा दुख में दोख संत का दुखी सदा पवित्र संत के दुखी को दान लागे संत का दुखी महाहंकारी संत का दुखी जन्मे मरे संत के दुखी को नाही खाओ संत का दुखी अद बीज से टूटे संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी अंतर से थोथा संत के दुखी की जड़ किस नाही संत के दुखी को अब न रखन हार संत का दुखी ओ बिललाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे संत का दुखी छुटे अकेला संत का दुखी धर्म ते रहत कीर्त निंदका तुर ही पिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी सदा सहताइए संत के दुखी की पूजे न आसा संत के दुख न तिष्ठे कोई आए पाया पया कृतना पेटे पेटे कोई सब कट किसके ओह करने हार प्रभु की रक्षा करो दिन रात सब कुछ बरते जिसका किया अपना खेल आप करने हार जिसनु कृपा करे

किसे बिरसा कोई नाही। अविनाशी प्रभा पे आप जिसो प्राणी रोचे कोई। कथान कपे कर नाम प्रभ की जो सकल कठो है। दास पावा

करते थे। मन अंतर की उतरे चिंत, संजना की दूर मर मांग, साथ संग घर साथ करो।

रूप हर आप गुरु नानक कहायो तत अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र

जब लो नहीं पागल लार उदय, तब लो परमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़ते, कबहू मिट रे नहीं रे पछतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़ते, कबहू मिट रहे है नहीं।

काल समुद्र पैर ऊपर प्रगट हर नाम उदारन, बसै शांत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारन, निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जान्यो पयो तह सम सर सोई, तारन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रिहो पर, पान मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रताख हर, तारन गगन नव खंड में जोत सब रूपी रिहो पर, पान मथुरा

0: प्रभंस जगत जस संचर्यो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।
1: देवपुरी में गयो आ परमेश्वर पायो हर सिंहासन दी।

0: रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो काटे सो पाप तिन नरो के गुरु रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो।
1: पै निर्भो माण्यो लाख में अलख लखायो अगम अगोचर गत गभीर सतगुर पर चायो गुर पर चै परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अपर सर सुपर परायो गुर गम प्रमाण अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जन कल उचरा तै सहज जोग निज पायो गुर गम प्रमाण अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जन।

0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो ईश्वरे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धाबुद्ध दाबृद कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं
1: सदा सर्वदा

0: में भुजंग पर्यात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती
1: चतुर चक्र पाले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र माने चतुर चक्र जाने
0: चाचरी छंद ना सत्र ना।

परिचन तब प्रसाद कथते किया छिजते से किया पिज पे से के आज लोके के आदित्य सोके के राजन प्रभा है के तरमन तुजा है के जगतन कृति है के छत्रन छत्री है के आद अदेव है कि आप अपेव है के रोजी रजा के रहीम में रह के अफूल गुनाह है के साहन सा है के राजक रहीम है के करमन करीम है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र मान्य सदैव प्रदान्य के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र कली में के परमन फही में के हुस्नुल वजू है तमाम रजू है।

निरुपत प्रभा है सदैव सदा है निरुपत सदा है विभुपत प्रभा है चाचरी छंद अपांग है।

0: सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
0: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
1: सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं
0: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता अनंगन स्वरूपे अभंगन विभूते
1: परमाते परमाते सदा सर्व साथे
0: अगात स्वरूपे निर्बाध विभूते
1: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्र न सत्रे न मित्र
0: न ताते न माते न जाते न पाते
1: साकल सरीखे अमितो अमीखे
0: सदैव प्रभा है अजय है जा है
1: भगवती जनता प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
0: हमें सुसलाम है समसुल कलाम है
1: साहेब के मागे के उस दल चला गए
0: के कामल करीम है के राजक रहीम है करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है अगंजुल गनी में रजायत रहीम है के नरकन प्रणास है बहिसुल निवास है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है अदेसुल अलेख है अमेसुल अपेख है करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है यह जब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अचलंग अनंग है के अमितो अभंग है हर पर गंज हर नर प्रभंज हर नर अखंड बर नर अमंड गुणगन प्रणाम जल जल मुदाम उपमा पार कपित उदार जल जल महंत जिस विस्पियंत आजान बाहो स्वीके सदा हो खल खंड ख्याल गुरबर अकाल अंशिज गाता जिजना बात अंटुट पंडार अंठडे अपार अणब्रण अनंत दाता महंत कल खंडन है मैं मंडन है कल कारण है सर्व वारण है मन मान्य है जग जान्य है सर्व पासे है सर्व नास्य है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है परते पर है करुणा कर है अकृता कृत है अमृता मृत है अकृता कृत है तरणी त्रित है अकृता कृत है अमृता मृत है निर्नायक है खलकायक है रिप नायक है सर्पायक है रिप्तापन है जप जापन है करता कर है हरता हर है आत्म बस है जस के जस है नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो परम तत्तन अतत्तन स्वरूपे नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो भोज भोज नमो पान पाने नमो इंद्र इंद्र अनादं विभूते नमो आसे आसे नमो बांक बंके त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे अभू अजू अनास अकास अकाल दयाल अलेख अपेख अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी अकर्मंग अपरमंग गंजे अलेखे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे कुकर्मं प्रणासी सुकर्मं विभूते करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी हरियं करियं करीमुल रहीमे स्वयं बल सुख

0: उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी
1: मनो क्यों विसारी
0: उसनु कोई पोहे न सके जिसनु अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा सवासी
0: है कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है
1: जैसी अगन उदर में तैसी बार माया
0: अगन सब इको जेही करता खेल रचाया
1: माता जम्या परवार भला पाया
0: लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया
1: ए माया जिदार विसरे मोह जे बहुत ऊंचा लाया
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया
1: हरे आप मुझके मुल न पाया जाए
0: किसे विटो रहे लोग बिलाए
1: ऐसा सतगुरु जीव है जिसनु सिर सौंपिए बिचो आप जाए
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।

0: जल जोगन देव पाद बचावे रागत है अपन कर दे कर पाप सबूना पेटन पावे
1: और की बार कहा के 200 सब बेटी के मन बीच बचावे
0: जज बजम सो दानव देव पेव तुम्हें सभी कर त्यावे पाए सके नहीं पार प्रवाहु को नेति नेते वेद बतावे नारद से चुतरार से रुम नारक से सब मिल गायो पाए सके नहीं पार मावन से दुसनात सनातन त्यायो वेद पुराण गते पुराण पेद निर्पाण सबे पचहारे राग न रूप न रेग न रंग न साक न सोग न सांग तिहारे
1: राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग राग रा

0: परमेश्वर
1: गुरुदेव सखा ज्ञान पंचन गुरुदेव पल्लव सहोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम श्री गुरुदेव मन निरोधरा
1: गुरुदेव सांत सद्गुत मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मंजन अपरंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सत पाप हरता गुरुदेव पति पवित्रा
0: गुरुदेव आज जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत जप मुद्रा
1: गुरुदेव संगत प्रभु कृपा मूल पाप

उठी स्नान करो फिर भाते हैं सोए हरिया राधे बिखड़े दाव लगावे मेरा सतगुरु सुख सहज सेती कर जाते हरिया पे खेल।

छाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया पौड़ी वड्डी हुआ।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई।

मन का सूतक लोभ है, जेवक जेवा सूतक कूड़, अखी सूत वेखना परत्रया परतन रूप, कन्नी सूत कन्न

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण

अपार अगम अगाध ऊच अपार जो तुद सेवै तिन भौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसै सो तेरा रूप